बारे में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही तुझे सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं सच्चा बना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे दिल बड़ी पसंद है, मैं हिंदी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी क्या

पढ्ने गर्ने तुझे बचाराउ सम्मु जे भाउ जे तुझे सपोर्ट आराउ तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बताराउ तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं खत्म बनाराउ वजन मेरी थोड़ी घटाराउ तुझे ब्लू बॉडी पसंद है मैं हिंदी खाने चबाराउ तुमने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी क्या अब भी

0: सोच्दै नि राम्रोसँग बस्नु ल, म त भोलि बाहिर जाँदैछु।
1: ए भोलि माघे नि मेला लाउँदैछ, रमाइलो गरेर जानु नि सुल्टीज्यू।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता।